0: गरौं, रुख रोपौं, माटो जोगाऊ, माटो जोगाऊ, पहिरो रोकौं, पहिरो रोकौं, सुरक्षित भविष्य बनाऊ।
1: आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिपेडको सहयोग तथा च्वाइस एफएम को सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश।
0: हरित गोर्खा, सुरक्षित गोर्खा।

0: नारायण चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज
1: चॉइस एफएम टाइम चेक
2: अहिले साँझको 6 बजेको छ।
1: इट्स 6 पीएम।